0: ये सभी आप बेटी सोनी पुंग बलाव
1: ये मरिया बेटी आजीव हम पुंग पस बलाव
2: ये नरहर बेटी जबरी
0: सिंग मोंगला एंड अक्षिक
3: मौई दरिया
0: मौई नूंग मौई